सारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां, शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरासो आमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे।

क्या नाहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधार, ओ साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया ए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द ध्रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित कर धारिया, पंच दो तुदवस कीते। काल कंट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को। से नाम हर कै लागे, कह नानक ता सुख हुआ। तित कर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे, सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर आ पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मंदावनी महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पई ओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित राखुर धारो। तम संसार चरण लग तरी, सब नानक ब्रह्म पसारू। शलोक महला पंजवा। तेरा कीता जा तू नाहीं, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाहीं, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निंदिया वे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत

विषादान पुरुषादान दाना श्रदान नामदान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल।

रव रहया सबनी जाई संतो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहाओ तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कुटान कुटान शुकराना अकाल पुरख वाहेगुरु का वडभागी हो। शामा वेले ते सज्जे दुआना दी हाजरियां भरदिया मुबारक बाणी दे कीर्तन अते सोदर दे पाठ नाल आप संगत ने सांझ बनाई है। गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास होई है। पावन पवित्र मुखवाक आप संगत ने सरवण कीता है जी। हुण कड़ा प्रसाद दी देग वरत रही है। समा है गुरबाणी कीर्तन दा। भाई दिलबाग सिंह जी लुधियाणे वालियां दा जथा आप जी नूं रब्बी बाणी दे कीर्तन करीब 6:20 तक सरवण करावेगा। सुआवड़ भागी हो हाजरियां भर के लाहे प्राप्त कर दिओ। गुरु घर विच सवेर तों लैके शामा तक दीवान निरंतर लगातार चलते रहिंदे ने जिहदे विच गुरबाणी कीर्तन कथा ढाडी वारां इतिहास अते श्री सहज पाठ जिहड़े ने उह निरंतर चलते ने। 12 तों लैके 4 ताईं गुरु घर विच सहज पाठ हुंदा है। जे कोई सहज पाठ की सेवा भी परिवार लैणी चाहुंदा है ते उह लै सकदा है। सो इसे तरह 6:20 तक भाई दिलबाग सिंह जी कीर्तन सरवण कराउणगे। 6:20 तो लैके 7 ताईं गुरबाणी विचार होवेगी। 7 तो लैके 8:20 तक भाई बलबीर सिंह जी बिहारीपुर वालियां दा जथा आप जी नूं ढाडी वारां ते इतिहास सरवण करावेगा जी। बड़े प्रेम श्रद्धा नाल सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

सो क्यों सो मैं सुख। बाबा कबीर साहब कहन लगे, कलेशां ते सहिमां दे विच दबिया होया बंदा कबरां दे समान हुंदा। हुण कईयां दी जिंदगी कबर अर्गी हुंदी है, कबर अर्गी, निकले इस कबर विचों बाहर, कबर जिथे डेड हुंदा बंदा, मुरदा हो जांदा, जिहदे अंदर कलेश चलदे रहिंदे ने, दुख ने, सहम ने, वो जिउंदिया जी किहदे विच पिया होया, कबर विच पिया होया, पिया होया उत्थे फ्यूनरल होम दे विच जिउंदिया जी। आखिया जाग सचेत हो। अगला बोल, कबीर सूता क्या करें उठ के ना जपें मुरार। आखिया उठ, रब नू चेते कर। एक दिन सोवन होए गो लांबे गोंड पसार। एक दिन तो फिर सोना हो ही जाना, पहला क्यों सोना? अच्छा, एक मौत साड़ी वो है जिहड़ी आउणी आउणी, एक दिन अटल है, उस तो पहला क्यों मरना? पहला बंदा किवें मरिया पिया है? दुखां तकलीफां ईरखा नफरत निंदिया द्वैश चुगली विच पहले ही मरिया पिया, वो एक दिन तो मर ही जाना है, पहला तो जी लो, पहला तो खुशी नाल जी लो, 4 दिन मरते जाना ही है। अगर फिर ऐसा मरना है भी फिर उठाया नहीं जाना, इस करके अंदरों ना मर, अंदरों जागदा रहे। एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार। अगला बचन अखीरला, कबीर सूता क्या करें बैठा रहो अर जाग। जागण का अर्थ हुंदा साध संगत सचेत होना। कई बार ना साडे च भी बड़े रवाज जिहड़े रीसो रीस चल पैंदे ने। वेखो, गुरबाणी का कीर्तन ते कीर्तन ही है, भावें वह रात नूं होवे, भावें दिने हो जावे, भावें जिहड़े वेले मर्जी होवे, पर उहनूं फिर नवें नवें नां दे के लोकां नूं ना अट्रैक्ट जे कीता जांदा। ये आत्म रस कीर्तन है, ये रैण सबाई कीर्तन है। की गल, आत्म रस दे विच ते जिहड़ी गुरद्वारे आसा की वार हुंदी, कोई फर्क हुंदा? आत्म रस ते लैणा हुंदा बंदे ने, ते बाणी दा ते कला कला बोल रस देण वाले, तू अपनी आत्मा नूं दे ते सही। हुण इदां दी शब्दावली घड़ी जांदी, तुसीं आ वेख्या हो, इह जी रैण सबाई होणी, हुण जी आत्म रस होणा, हुण जी जप तप समागम होणा, पढ़िया की जाणा है? उत्थे की पढ़िया जाणा? बाणी पढ़ी जाणी है ना। ते आ हुण मेरे तों पहलां रागी सिंघां ने की पढ़िया? बाणी पढ़ी है। इहो ही रागी सिंह आत्म रस झोणे ने, भी उत्थे कोई उत्तों रूहां उतर के आउंदियां ने, भी उत्थे जिहड़े रागी ने वह इंडिया तो इनवाइट किए जाते कि गांह कि स्वर्गां चों आए हुंदे ने, उहो ही रागी हुंदे ने, उहो ही बाणी दे शब्द हुंदे ने। मतलब इदां दे टोटके जे घड़के जी, रैण सबाई कीर्तन, आत्म रस कीर्तन, जप तप कीर्तन, मतलब लोकां दे ब्रेन वॉश किए जा रहे ने। हुण रैण सबाई चल है, जिवें हिंदू वीर जगराता करते हैं ना, रैण सबाई का मतलब यही हुंदा, रैण तो लैके सबाई सुबह तक, रात तो लैके सुबह तक, वह जगराता कहिंदे ने, यह रैण सबाई कह लेंदे ने। होना की है, बाणी पढ़ी जानी है ना, तो बाणी रात को पढ़ी जाती है गुरुद्वारों के।

पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहाओ तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख

सर्वदया भरपूर, जिन्ना प्रीत न लगी हा पाई, से नित नित मरद चूर, अंचल लाए तराया पाई, बोझल दो संसार, कर कृपा न निहालिया पाई, की तुरंग अपार, मंद शीतल होया पाई, भोजन नाम आधार, नानक ते सुनागति पाई, जे किरवे काटनार, सोठ मल्ला पंजवा, मात गर्भ दुख सागरो प्यारे, तया अपना नाम जपाया, बाहर काड बेख पसरिया प्यारे, माया मोह वधाया, जेनो कीते करम प्यारे, ते पूरा गुरु मलाया, सो राधे सा सा प्यारे, राम नाम लिवलाया, मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक है प्यारे, मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर न करन हर प्यारे, अंतर जामी एक रहाओ, कोड़ जन्म पर माया प्यारे, अनग जम दो पाए, साचा साहब विसरिया प्यारे, पौती मिले सजाए, जिन पेटे पूरा सदगुरु प्यारे, सो लागे साचे नाए, जिन्ना तिन्ना पिछे छुटिए प्यारे, जो साची सरणाए, मिठा करके खाया प्यारे, तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए पद सटिया प्यारे, तिस्ते उपजिया सोग, भोग पचाए पलायन प्यारे, उतरे नहीं भजो, जो गुर मेलो तारिया प्यारे, तिन तुरे पिया संजो, माया लालच अटिया प्यारे, चेतन आवे मूल, जिंतो विसरे पार ब्रह्म स्वामी, सो तन होए तूड़, बिलाड़ करे बहुतेरिया प्यारे, उतरे ना ही सूल, लालच अटिया प्यारे, माया लालच अटिया प्यारे, चेतन आवे मूल, जिन तो विसर पार ब्रह्म स्वामी, से तन होए तूड़, बिलाड़ करे बोतारिया प्यारे, उतरे ना ही सूल, जोगर मेल प्या जोगर मेल सवारिया प्यारे, तिनका रे मूल, साकत संग न की जी प्यारे, जेका पार वसाए, जिस मिलिया हर विसरे प्यारे, सो मोह काले उठ जाए, मनमुल टोही ना मिले प्यारे, दरगह मिले सजाए, जोगर मेल सवार प्यारे, तिना पूरी पाए, संयम सहज सियाण पा प्यारे, एक न चली नाल, जो बेमुख गोविंद ते प्यारे, तिन को लागे घाल, होंदी वक्त न जाती है प्यारे, कूड़ न चली नाल, सतगुर जिन्ना मलायन प्यारे, साचा नाम संभाल, सात संतोग ज्ञान ध्यान प्यारे, जिनो नर करे अंधन कीर्तन गुरु प्यारे, अमृत पूर भरे, दो सागर तिल लंघिया प्यारे, पवजल पार भरे, जे पावे ते मेले प्यारे, से इसदा खरे, समर्थ पुरख दयाल दियो प्यारे, भगतां तिसका तान, ते सुनाई टै पै प्यारे, जे अंतर जामी जान, हलत पलत सवारिया प्यारे, मस्तक सच नसान, सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे, नानक सद कुरबान, सोठ मल्ला पंजवा, कर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाठ पढ़ियो अर बेद बेचारे हो, निवल प्यंगम साध है, पंज जना सों संग न छुटक्यो, अदक अहों बोध भादे, प्यारे इन बेद मिल न जाई, मैं किए कर्मा ने का, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बोध बेखा। प्यारे इन बिन मिल न जाई, मैं किए कर्म होने का, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बोध बेखा।

0: साहिब से तिहु न चल कही बने अरदा कूड़ कमाने कूड़ो होवे नारक सिफत विगास महला दूजा
1: नाले आने दोस्ती बाडा रूसो ने हो पानी अंदर लीक ज्यो ते सदा था न थियो महला दूजा होए आना करे कम आन ना सकेरा जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी
2: चाकर लगे चाकरी जे चले कसमें पाए और

पीतर वगै काती प्राणवात नानक हुकम पछाणे सुख होवै दिन राती। वाहिगुरु जी गौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर पाई।

ना कोई आखण वेखण सब साहेब ते होए आपे लिव मलाय गुर कै शब्द साच समाए रहाओ मान बसंत हरे सब लोए फलहे फुलिए राम नाम सुख होए सदा बसंत गुर शब्द विचारे राम नाम राखे और धारे मन बसंत तन मन हरिया होए नानक एहो तन बिरख नाम राम नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोए बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाए पूरे भाग हर भगत कराए इस मन कौ बसंत की लगे ना सोए

मन हर सिमरहु अंत सदा रख ले। हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख भंज भ्रम पाया। गुरमत गावहु गुण प्रभ के रे रहाओ। मन फिर फिर हमें मुए, काल दैत संघारे जम पुर गए। गुरमुख हर हर हर लिब लागे, जन्म मरण दऊ दुख भागे। भगत जना कौ हर कृपा धारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी। संत हिंडोल महला चौथा, घर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदिर एक लकानी। सतगुर मिले ता कूजिया, मिल ज्योति ज्योत समानी। माधो साधु जन दे मिलाए, देखत दर्श पाप सब ना सहे। पवित्र परम पद पाए, रहाओ पंच ज्योत मिल लागे। नगरिया राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे। धन साब तरास उबरिया,

चरण हम बिनशय। गोविंद जियो सतगुर मेल कर, जन जात अब जाता हर जपियो पतत पविशे। हर कियो सगल भवन ते ऊपर, हर सुबह हर प्राप दिनशे। जात जात कोई प्रभ ध्यावै, सब पूरे मानस तिनशे। से तन बड़े बड़ पूरे, जन नानक जिन हर तारेओ हर उरसे। हम टींडे टीम बहुत अत पारी, हर धार कृपा प्रभ बिनशे। जन नानक गुर पाया हर तुठे, हम किए पतत पविशे। बसंत महल

है मधुसूदन हर तार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मलाई है जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाई है बसंत हरडोल महला चौथा आवन जान पया दुख बिखिया देह मन मुख संजी सुंज राम नाम खिन पल नहीं चित्या जम पकरे काल सुरंज गोविंद जियो बिख हमें ममता मुंज सत संगत गुर की हर प्यारी मिल संगत हर रस पुंज रहाओ सत संगत साध दया कर मिलाहो शरणागत साधु पुंज हम डुबदे पाथर काढ लेहो प्रभ तुम दीन दयाल दुख भंज हरि उस्तत धारहु हृदय अंतर स्वामी सत संगत मिल बुद्ध संजन सुन मिल बुद्ध लहुंज हर नामै हम प्रीत लगानी हम हर विटहु कुमो वंज जन के पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देवाहो हर लंज जन नानक मन तन आनंद पिया है गुर मंत्र दियो हर पंज बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुके एक ओंकार सत गुर प्रसाद गुर सेवा हो कर नमस्कार आज हमारे मंगलाचार आज हमारे महा आनंद चिंत लथी पिटे गोविंद आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत रहाओ आज हमारे बने भाग प्रभ संगी मिल खिलन लाग हौली कीनी संत सेव लंग रंग लागा अत ना लाल देवा मन तन मोल्यो अत अनूप सुके नाही शाव धूप सगली रुति हरिया होए साध बसंत गुर मिल देव नानक हर हर हर त्याय

प्राप्त साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते भये मुक्त भगत अराधे जोग जुगत नेत्र संतोखे चरण पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूझी गुर प्रसाद न मन मन आगाना हर रसे स्वाद सेवक लागो चरण सेव आदि।

तिस तू सेव जिन तू किया तिस आराध जिन जियो दिया तिसका चक्र हो हे फिर ना लगे तिसकी कर पुतदारी फिर दुख ना लगे ये बड़ भाग हो हे जिस प्राणी सो पाए यो पद निर्वाणी रहाओ दूजी सेवा जीवन बिरता कसूना हुई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दहेली साध की सेवा सदा सहेली

सगल तत् मह तत् ज्ञान सर्व ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गए गुना। बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस अरादे जम किछ न कह जिस की सेवा सब किछ लह राम राम बोल राम राम त्याग मन के सगल काम रहाओ जिसके तारे तरने आकाश घट घट हर का है प्रगास जिस सिमरत पत पनीत होए अंत काल फिर ना रोए सगल धर्म मैं उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिस को चाह है सुर नर देव संत सभा की लगो सेवा जिस सिमरत पतत पनीत होए अंत काल फिर न रोए सगल धर्म मैं उत्तम धर्म कर्म करतूत कै ऊपर कर्म जिस को चाह है सुर नानक देव संत सभा की लगो सेव नानक जन हर हर त्याय। संत महला पंजवा मन तन भीतर लागी प्यास गुर दयाल पूरी मेरी आस किलबिख कट साध संग नाम जप्यो हर नाम रंग गुर प्रसाद बसंत बना चरण कमल हृदय और तारे सदा सदा हर जस सुना रहाओ। सम्राट

अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर सच जा नहीं जाए, दुख देश दसंतर रहे ताए, किरतो न का मिष्ट नाहे, ओए अपना बीज आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन का पहुंच ना सकस कोए, प्रभदास रखे कर जतन आप।

तू समरथ स्वामी मेरा, हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे, भिखम तेरा है पाना। कहो नानक टह पया द्वारे, रख देव हो मुगध अजाना। बसंत डोल महला पंजवा, मूल न बुझे अप ना सूझे, परम व्यापी अहमनि। पिता पर ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाओ। ओ पत परलो प्रभते होवे, एह बिचारी हर जनी। हर ना हर प्र हर नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी। अबर पाव न कोई सुजै, नानक तरिय गुर बचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत ही डोल महला नौवां।

हो जग है संपत सुपने की देख कहाँ ऐ डन संगत हारे कछु न जन चालै ताहे कहाँ लपटनो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीर्त हर अनो जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो।

जिन जह जह हर को नाम सुमारते भव सागर उतरे पार। जान नानक हर की शरणाए जान नानक हर की शरण आए फास। जय जय हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार। जान नानक हर की शरण आए दीजै नाम रह गुण गाए।

गही भगत भगवान जन्म जन्म का संसार चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल बिनासी मानते निज सुख मह समाया जा को होत

तन बिनसै जम स्यों परै काम राहौ। एहो जग धूऐ का पहार तै साचा मान्या कह विचार। धन दारा संपत गृह कछ संग न समझले। एक भगत नारायण होए संग कह नानक पज तह एक रंग। बसंत महला नौवा कहा भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगरे ओ नाहिन अजहू जाग रहाओ।

मैं गुण परगासा। मेरे ठाकुर के जन प्रीतम प्यारे, जो हुआ दासन दासा। आपे जालिया परंपर करता, आपे मेल मिलावे। नानक गुरमुख सहज मिलाए, जो जल जल समावे। बसंत महला पंजवा, कर पहला स्तुत किया। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार। अजामल उदरिया कह एक बार, वाल्मीक हुआ साधु संग। ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचों चरण रेन। ले मस्तक लाभों कर कृपा देन, रहाओ गणका उदरी हर कह तोत। गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, पिपर सुदामे दारद भंज। रे मन तू पी भाज गोबिंद, बदक उदार्यो उदार्यो खाम प्रहार। कुबजा उदरी अंगुष्ट तहार, बिदर उदार्यो दास पाए। रे मन तू पी हर त्याए, प्रहलाद हर रखी हर पै जाप। वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्या अंत बार। रे मन सेव तू परह पार, तन्ना सेव्या बाल बुद्ध। त्रिलोचन गुर मिल पई सिद्ध, बेनी कहो गुर कियो प्रगास। रे मन तू पी हो हे दास, जय देव त्यागो अहमेव। नाई उदर सैन सेव, मन डीग न डोला कहूं जाए। मन तू पी तरसा सरन पाए, जे अनुग्रह ठाकुर कियो आप। से तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुना बिचारियो कोय। यह वे देख मन लगा सेव, कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जीव वसै संग, रविदास त्याय प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा। अनक जन्म भ्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डांड। गोबिंद भजो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाओ संतोख न आवत कहूं काज, तू बहादुर सब माया साज। पाप करंतो न संगाय, देखा माता आवत जाय। हाँ हो करत वदे विकार, मोह लोभ डूबो संसार। काम क्रोध मन वस किया, सुपना नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार, दुख सुख बांधो संसार। मन उदरन का साज नाही, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत पऊ सखा नाहे, आप भी जापे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गवार। माया मोह बहु भरमिया, किरत रेह कर करमिया। करण हर लिपत आप, नहीं दे प्रपुन पाप। राख लिख गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूरन कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ दे हो नाओ। तू करता तू करण हार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की सरनाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हार का नाम त्याए कह हो हरिया पाई, कर्म लिखन ते पाई है रुत सुहाई। वन तंत्र भवन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुख उपजाय, लत्थी सब छाई। नानक उदर सिमर एक नाम, फिर पौड़ ना ताई। पंजे बदे महाबली कर सच्चा ठुआ, अपने चरण जपायन विच दए खड़ुआ। रोग सुख सब मिट गए, नित नवा नरुआ। दिन दिन नाम ध्याईंदा फिर पाए नमुआ। जिस ते उपजया नानका, सोई फिर हुआ। कितों उपजे कर कह माह समावै, जी जन सब खसम के कौन कीमत पावै। कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावै। अगम गोचर साहिब, दूसर लवै न लावै। साच पूरा गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सत गुर प्रसाद, मौली धरती मौलिया आकाश। कट कट मौलिया आत्म प्रगास, राजा राम मौलिया अनंत पाई। जहां देखो तर समाय, रहाओ द्वितीया मौले चार वेद। सिमरत मौली सोख तेब, शंकर मौले जोग ध्यान। कबीर को स्वामी सब समान, पंडित जान माते पढ़ पुराण। जोगी माते जोग ध्यान, सन्यासी माते अहमेव। तपसी माते तप कह भेव, सब मद माते को न जाग। संग ही को चोर कर मसन लाग, रहाओ जागे सुख देव आगर करूर। हनुमंत जागे धार लंकुर, शंकर जागे चरण सेव। काल जागे नामा जय देव, जागत सोबत बहु प्रकार। गुरमुख जागे सो

आठ पहर दर्शन संतन का सुख नानके पायो सारंग महला पंजवा जाकी राम नाम लिव लागी सज्जन सज्जन सुरदा सुहेले सुहेला सहजे सो कही एवड भागी रहाओ रहाओ रहत बिकार अल्प माया ते अंग बोध बिख त्यागी दर्श प्यास आस एक है की टेक ही है प्रेपागी अचिंत सोए जागन उठ बैसन अचिंत हस्त बैरागी

मन ने नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दिशे शार रहा ग्रह अंधकूप पतल पराणी नरक घोर गवार अनक जोनी भरमत हारो भरमत बारंबार पतत पावन भगत बशल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगै साध संग उदार चारग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप आद ब्याद उपाद सब नासी बिनसे तीने ताप रहाओ तृष्णा बूझी पूर्ण सब आसा चूके सोग संताप गुणगावत अचुत अवनासी मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु के संग काप भगत वशल पै काट नहारे नानक के माई बाप सारग महला पंजवा आतर नाम बिन संसार तृप्त न होवत कुकरी आसा इस लागो बिख्या शार राओ पाठ गौरी आप लायो जन्मत बारो बार हर का सिमर निमख न सिमरियो जम कंकर कर दुखवार हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरे संतां की रवार नानक दास दर्श प्रभ जाचै मन तन को आधार सारग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप लाया विखेठ गौरी पियो रहाओ कोट जन्म भरम तो बहु भांति चितनी कतु पाई पूरा सतगुरु सहज न भेटिया साकत आवे जाई राख लियो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ गामे पार नानक दास तेरी शरण आई भव जल उतरो पार सारग महला पंजवा रमन को राम के गुण बाद साध संग थे आइए परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अवनासी बिनसे माया माल सहज आनंद अनहर तुन बाणी बौर न भय विखाद सनकालक परमादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीव जम्यो मनोहर रस जब नानक हर बिस्माद सारग महला पंजवा कीने पाप के बोकोट जन सरैणी थकत नाही कतहे नाही चोट रहाओ महावज्र भिख व्याधि सिर उठाई पोट उगर गियां खिने पीतर जमे ग्रह से चोट पस प्रेत उस गर्दब अनक जो नी लेट पर साध संग गोबिंद नानक कछु न लागे पेट सारग महला पंजवा अंधे खावे पिशु के गुटाक नैन सरवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत्काट राव अनाथ ज्ञान उधर ले पोख्यो माया गैया हाट किरब करद कत पछतावै कबू न साके शांत निंदक जमदूती आए संगारियो देवे मूंड उपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई मन अपना की नो पाठ सारग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीज जनकारा खाया आप स्वामी बेमुख को आए पौची मीच राव उसका कहया कोई न सुनी कई न भैसण पावै इहां दुख आगे नरक पूंचे बोझो नी परमावै प्रगट भया खंडी बरमंडी कीता अपना पाया नानक सर निरपो कर दे की नंद मंगल गुण गाया सारग महला पंजवा तिसना चलत बहु प्रकार पूर्ण होत नकत हूँ बातै अंत प्रतिहार रहाओ शान सुख ना सहज उपजै एह इस व्यवहार आप कर का कछु न जाने काम करो दह जार संसार सागर दुख व्यापियो दास ले वोतार चरण कमल शरण आए नानक सदा सदा बलिहार सारग महला पंजवा रे पापी ते कमन की मतलीना निमख करी ना सिमर स्वामी यो पिंड जिन दीन रहाओ खात पीवत सबंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिरलाट करता तरा होवत दीन तहां होवत दीन महामाद विकार बादा अनक झून परमीन गोबिंद बिसरे कमन दुख गनिया सुख नानक हर पद जीन सारग महला पंजवा माई री चरण उठ गही
ਕੀਮਤ ਜਾਤ ਨ ਕਹੀ। ਜਲ ਤਰ ਪੇਖ ਪੇਖ ਮਨ ਬਿਕਸਿਓ, ਪੂਰ ਰਿਹੋ ਸਰਬ ਗਈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਮਿਲ ਸਾਦਾ ਕੀਨੋ ਸਹੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਮ ਕੀ ਭੀਰ ਨ ਪਈ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਇਰੀ ਮਨ ਮੇਰੋ ਮਤਵਾਰੋ, ਪੇਖ ਦਿਆਲ ਨਨ ਸੁਖ ਪੂਰਨ। ਸੁਣੋ ਹਰ ਰਸ ਰਭਿਓ ਕੁਮਾਰੋ, ਰਾਓ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਉਜਲ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਬੌਰ ਨਾ ਹੋ ਅਧਕਾਰੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂਡੋ ਰੀ ਰਾਚੀ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੋ। ਕਰ ਗੈ ਲੀਨੇ ਸਰਬਸ ਦੀਨੇ, ਦੀਪਕ ਭਇਓ ਉਜਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਕੁਲ ਸਮੂਹਾ ਤਾਰੋ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਹੀ ਰੀ ਆਨ ਸਿਮਰ ਮਰ ਜਾਈ। ਤਿਆਗ ਬਨ ਜੀ ਅਨਕੋ ਦਾਤਾ, ਮਾਇਆ ਸੰਗਲ ਬਟਾਹੀ। ਰਾਵ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ, ਨਰਕ ਘੋਰ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਅਨਕਸ ਜਾਹੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਗਰਭੇ ਗਰਭ ਪਰਮਾਏ। ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਹਰ ਕੀ ਸਰਨ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜੀਤਿਓ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕਾਟੀ ਕੁੱਟਲ ਤਾ ਕੁਠਾਰ, ਭ੍ਰਮਣ ਦਹਿਨ ਭਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਹਾਰ ਰਹਾਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿੰਦਾ ਪਰਹਰੀਆ, ਕਾਢੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗਮਾਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ

संघ कृपा सगल एकाद एक हजार नानक जन किया भोर न जोन परमाद सारग महला पंजवा माई री माती चरण समूह एक सबिन हो आन न जानो द्वितीया पो सबलू राव त्याग पाल अवर जो करना ते बिखे आके कु दर्श प्यास मेरा मन मोयो का डिनर ते तू संत प्रसाद मिलियो सुखदाता विनसी हो मैं हूँ राम रंग।